0: और अब मैं एक इजलास के लिए सिचुएशन रूम में जा रहा हूँ और हतमी फैसला करूँगा। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान अभी तक कोई माहदा तय नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि आप नए हुरमुस के इंतज़ाम का तयन ईरान और ओमान को करना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि तेहरान ने मुजाकरात के दौरान रियायतें मिज़ाइलों के ज़रिए हासिल की हैं, बातचीत के ज़रिए नहीं। एक पैगाम में उनका कहना था कि हमें ज़मानतों और लफ्ज़ों पर एतमाद नहीं बल्कि आमाल पर है। दूसरे फरीक की किसी कार्रवाई से कबल हमारी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना था कि इस माहदे में फातह वही होगा जो उसके अगले ही रोज़ से जंग के लिए तैयार होगा। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजे के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका इसराइल के लबनान और फ़लस्तीनी इलाकों और पूरे खित्ते में किए गए तमाम जराइम का शरीक और मआविन है। इस्माइल बकाई ने कहा कि हालिया दिनों में इसराइली फ़ौजी हमलों में शिद्दत आने के बाद लबनान में दर्जनों अफराद जाँबाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बैन अलाक़वामी इदारों की खामोशी और बेहिसी इसराइल को मज़ीद जारह बना रही है। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने इसराइली दिफाई अफवाज को गजा का 70% इलाका कब्जे में लेने की हिदायत कर दी है। वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से गजा पर कंट्रोल में ये तौसी उस जंगबंदी माहदे के मुनाफी होगी जिस पर इसराइल और हमास ने अक्टूबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की क्यादत में इतफाक़ किया था। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने अमन को आगे बढ़ाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की और बैन अलाक़वामी बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने अमरीका के साथ किसी माहदे पर पहुँचने के लिए मौसर कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ईरान की पॉलिसी ये है कि वह मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ तमाम शोबों में तआवुन को वसअत दे। उधर वाशिंगटन में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खारजा इसहाक़ डार ने माहदे इब्राहिमी और इस्लामाबाद की पॉलिसी पर तबसरा किया है। उनका कहना था कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान से कहा गया है कि वो माहदे इब्राहिमी का हिस्सा बने। पाकिस्तान की इस हवाले से हमेशा बहुत वाज़े पॉलिसी रही है कि जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता और वो सन 1967 से पहले वाले मॉडल पर वापस नहीं जाता और यरूशलम उसका दारुल हुकूमत नहीं बन जाता, तब तक इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। उधर भारतीय पंजाब में होने वाले सिविक बॉडी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने एक ज़बरदस्त जीत हासिल कर ली है और 1977 नशिस्तों में से 957 नशिस्तें जीत लीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 167 नशिस्तें जीत सकी। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम करना होगा जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम मुलज़ूम हैं। उधर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर और उनके साथियों को गिलगित बदर कर दिया गया। वजीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान साजिद अली बेग ने इस हवाले से कहा कि जुनेद अकबर और उनके साथियों ने इंतखाबी जाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी की। वो बगैर इजाज़त और इत्तला के गिलगित पहुँचे और रैली से खिताब किया। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर खान और दीगर पार्लियामेंटेरियंस की गिलगित बल्तिस्तान में गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए खुद गिलगित जाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत इस कदर खौफजदा हो चुकी है कि इलेक्शन से पहले ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीन मैचों पर मुश्तमल वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज कल से रावलपिंडी में हो रहा है। और आखिर में ये खबर कि कल जीटीए में गैस की कीमत में 2 सेंट फी लीटर इजाफा हो जाने का इम्कान है। इसके साथ ही अब तक की खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
1: टोरंटो 360 टीवी आपका अपना 24/7 चैनल, तमाम आईपीटीवी बॉक्सेस, जादू बोल, शावा और जूम बॉक्स पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में देखिए। टोरंटो बेस्ड पाकिस्तानी चैनल्स में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल। सुबह अजान फजर के बाद एक पारे की तिलावत उर्दू तर्जमे के साथ, इस्लामिक सेगमेंट, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, सोशल इश्यूज, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के साथ साथ कॉमेडी प्रोग्राम भी। हर रात 8 और 10 बजे टोरंटो 360 स्पेशल प्रेजेंटेशन, पाकिस्तानी फीचर फिल्म रात 11 और दिन 1 बजे, शहर में होने वाली तकरीबात की कवरेज और बहुत कुछ। टोरंटो 360 टीवी, पाकिस्तान की पहचान, आपका अपना 24/7 चैनल, टोरंटो 360 टीवी, आपकी आवाज आपके अंदाज में।
2: टोरंटो 360 टेलीविजन चैनल, बाप एप्पल टीवी, अमेजन फायर टीवी, रोकू टीवी के साथ साथ ओवर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी मैं निशान देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो में निशान 7 से 9 बजे आप सीएमआर 101.3 एफएम पे सुनते हैं। हमारे टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 पे आप देख भी सकते हैं। जी हां, 2 घंटे का ये प्रोग्राम आपके लिए टेलीविजन पर भी लाइव पेश किया जाता है। ईद का आज 3रा दिन है यहाँ पर और कोई ईद वाली बात है नहीं। आपको मुबारकबाद ज़रूर देंगे, कहते 3 दिन ईद मनाते हैं और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, टोरंटो 360 टीवी और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स की जानिब से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले दिन को ईद का लगा, कोई एहसास हुआ यहाँ पे कि ईद है, और उसके दूसरे और तीसरे दिन तो बिल्कुल नहीं पता चला। और काम ही ज़्यादा, 3 दिन वर्किंग डे थे क्योंकि उस दिन नमाज पढ़ी, छुट्टियाँ सब लोगों ने ली हुई थी, जो जो जॉब भी कर रहे थे, तो चले मोबाइल मुलाकात भी हो गई, छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी हुए, लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पे बाहर बस ईद, वो ईद वाला दिन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो इस दफ़ा बहुत ही मज़े हो गए, मेहल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, 5-5, 6-6 छुट्टियाँ जो हैं वहाँ पर लोगों ने यकीन मनाई होंगी, लेकिन गर्मी बहुत है वहाँ पर। और जनाब, आप थोड़ी सी सियासत कर बात करें तो वाशिंगटन में वाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ, लेकिन ईरान और अमरीका के माहदे का जो ट्रंप साहब का हतमी फैसला, उसको मौखर किया है, बेनतीजा ख़त्म हुआ है इजलास। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तौसी के माहदे पर फैसला नहीं कर सके। वैसे प्रिंसिपली एग्री उन्होंने कर लिया था और इससे पहले अपना हुरमस की नाकाबंदी ख़त्म कर दी थी, सदर ट्रंप ने इसका ऐलान किया था, जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान को मुतफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार एटमम नहीं बनाएगा, अपना हुरमस को फौरी तौर पर खोलना होगा। तो रोज़ यहाँ तो कभी कुछ सिचुएशन होती है, कभी कुछ सिचुएशन होती है। अमरीकी वजीर ख़जाना का आज एक बयान था कि अमरीका ने ईरान के 1 अरब डॉलर मदद के क्रिप्टो इसासे जो हैं वो जब्त कर लिए हैं। नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतल जो उनका सवाल था, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। ओमान ने अपने हुरमत पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहाई करारी है, तो ओमान को भी अमेरिका ने थोड़ा थ्रेट किया था। और ओवरऑल मेरे ख्याल में अमेरिका को वो चीज़ नहीं हासिल हो सकी, ना ही इसराइल को, जो उनका ख्याल था ईरान पर हमला करने के बाद। और अब जाहिर है इस मामले से निकलने की तगो दोग हो रही है और उसके लिए पाकिस्तान अपनी तई कोशिशें कर रहा है, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, अब ओमान है, यूएई इसमें शामिल है, अमेरिका तो है ही है, और रोज़ मुलाकातें हैं, रोज़ आना जाना है। और जंगबंदी तो बहरहाल रहेगी, होपफुली, छोटे मोटे मामला तो चलते रहते हैं, इसका कुछ ना कुछ नतीजा बहरहाल जल्द निकलने वाला है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM, मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: Alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Vishal Trivedi, wahi jana pehchana naam, life insurance portfolio specialist. Ab Vishal se hi lijiye guaranteed cash value life insurance, mortgage insurance, critical illness insurance, income replacement insurance, super visa insurance, travel insurance, visitors to Canada insurance. Compare with Vishal and get the best possible discounts on visitors and super visa insurance. Call Vishal Trivedi at 647-767-9852. That's 647-767-9852. Vishal Trivedi.
2: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, it's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200. It's 416-206-3200.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन कॉल 9055147877। वही जायका, वही लजत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
5: जी हाँ, चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है। अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं तो एक बार आप यहाँ जरूर तशरीफ ले जाइए। वीकेंड पे चलिएगा, स्पेशल स्पेशल डीज इन्होंने लगाई हुई हैं और 100% आपको हलाल फ्रेश अथेंटिक फूड आपको मिलेगा। इकबाल शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल में सुनेंगे। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम।
6: जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑनर लेने का। आपको और आपके सारे सामान को बहुत बहुत बकरीद मुबारक।
5: बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी ईद मुबारक। और ईद पे बड़ी स्पेशल, हमने सुना है कि आपने ऑफर्स भी लगाई हुई हैं और वैसे ही अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन शायद है ही नहीं, रिजवे प्लाजा में तो शायद यही वाहिद है और लोग तारीफ भी बड़ी करते हैं। कुछ बताएंगे चाय खाना के हवाले से और स्पेशल ईद की डील्स के हवाले से?
6: जी बिल्कुल, ईद पर हमने फ्लैट हर चीज पर, हम पाकिस्तानी कुछ थोड़ी बहुत हमारे पास पाकिस्तानी कुजीन भी है लेकिन मेनली हमारे पास पाकिस्तानी चाइनीज है। सब पर फ्लैट हमने 15% ऑफ लगाया हुआ है, डाइनिंग और टेकआउट दोनों पर। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारे पास ईद के पहले दिन भी आए थे और आपके प्रोग्राम सुन के तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश गए और बहुत अच्छे उन्होंने रिव्यूज भी दिए, सब लोग चेक भी कर सकते हैं और बहुत खुश गए, उनको खाना बहुत पसंद आया और सबकी जुबान पर यही था कि हमें वही पाकिस्तानी जायका, वही जो हम इस कर रहे थे, हमें वही यहाँ पर पहली बार मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शेफ हमारा वहीं से आए हैं।
5: सही,
6: तो आपको वही जायका मिलेगा इंशाल्लाह।
5: अच्छा, आपके पीसी के सुना शेफ हैं, 14 साल वहाँ उनका एक्सपीरियंस रहा है तो आपको वही जायका और वही टेस्ट मिलता है। आपको मसाले वगैरह क्या आप खुद तैयार करते हैं, कैसे होता है?
6: भट्टी साहब, हम ना सिर्फ मसाले हमारे अपने हैं, हम कोई MSG इस्तेमाल नहीं करते, कोई हमारा पॉकेट डब्बे का मसाला नहीं है, हमारी सॉसेस भी जो इसकी अपनी सॉसेस होती हैं, हम सॉस भी खुद ही तैयार करते हैं।
5: okay.
6: फ्रेश चिलीज लेकर, फ्रेश चीजें लेकर, सारी सॉस हम खुद अपने स्टोर्स पर तैयार करते हैं वहीं पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है,
5: सही,
6: क्योंकि उनको सबको सिखाया जाता है पीसी में सॉस बनाना और सारी कटिंग्स बिल्कुल डिफरेंटली आपको मिलेगी इंशाल्लाह।
5: वेरी राइट। और जनाब, रिजवे प्लाजा में यूनिट इनका 30 है, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना चाइनीज कुजीन, अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन। अच्छा, अब वहाँ आजकल थोड़ा बहुत ये होता है कि अच्छा रेस्टोरेंट बना हो, एम्बियंस अच्छा हो तो प्राइसेस बड़ी थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, आपकी प्राइसेस बारे की क्या सूरत हाल?
6: जी प्राइसेस हमने, क्योंकि हम नए हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें तो सारी चीजें हमारी अंडर $20 हैं और एक कोई भी आप डिश, कोई भी आप एक डिश लेंगे इंशाल्लाह वो आराम से दो लोग खा सकते हैं, तो क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी बहुत अच्छी प्राइस पर है।
5: ज़बरदस्त हो गया जनाब, आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए, वीकेंड है और वीकेंड पे आप पाकिस्तानी चाइनीज़ खाने खाने तो एक बार चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुज़ीन तशरीफ़ ले जाइए। नंबर भी आप नोट कर लें आप बुकिंग के लिए, 9055147877, 9055147877, 3920 ग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा में सागर में। शाह साहब, कुछ और ऐड करना चाहें, कुछ डिटेल बताना चाहें?
6: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बस ईद का दिन है, आप कल वीकेंड है, आप ज़रूर आएँ और एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें बताएँ कि अगर कोई کمی ہے تو ہم اس کو اور بھی بہتر کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا.
5: چلیں بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو, بہت شکریہ.
6: بہت شکریہ آپ کا.
5: سعید اقبال شاہ سے ہمارے ساتھ تھے, چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے جو کہ رجوے پلازا میں 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30, اور سبھی لوگ جو جاتے ہیں مختلف کھانے ٹرائی کرتے ہیں. اگر آپ نے چائنیز پاکستانی چائنیز کھانے نہیں کھائے تو ایک دفعہ رجوے پلازا جائیں تو آپ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین میں ضرور تشریف لے جائیے گا. 4165930003. دنیا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی پرابلم کا شکار رہتی ہے. کبھی کوئی وبا آ جاتی ہے, کبھی زلزلے آ جاتے ہیں, کبھی کچھ معاملات ہیں. اب افریقی ممالک کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا وائرس جو ہے وہ خطرناک حد تک پھیل رہا ہے, تو دنیا بھر میں سفری پابندیاں اب سخت کر دی گئی ہیں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کانگو میں ایبولا وائرس کے اب تک 900 مشتبہ کیسز سامنے آئے ہیں, 220 سے زیادہ اموات بھی ہو چکی ہیں. یوگینڈا میں 5 اور ایک ہلاکت کی تصدیق ہے. کانگو حکومت نے وائرس پر قابو پانے کے لیے مشرق علاقے بونیا جانے اور وہاں سے آنے والی تمام پروازیں معطل کر دی ہیں. صرف طبی انسانی امداد اور ہنگامی پروازوں کو خصوصی اجازت دی گئی ہے. امریکہ نے کانگو, یوگینڈا اور جنوبی سوڈان سے آنے والے غیر ملکی مسافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے, اور ان آج ممالک سے آنے والے افراد کے لیے 21 دن کی نگرانی اور قرنطینہ جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے. برطانیہ, جرمنی, فرانس سمیت کئی یورپی ممالک نے ہوائی اڈوں پر سخت اسکریننگ شروع کر دی ہے. متاثر علاقوں کے لیے غیر ضروری سفر سے خبردار کیا گیا ہے. یو اے ای, سعودی عرب نے بھی متاثر علاقوں سے آنے والے مسافروں کے لیے صحت سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دی ہے, جبکہ بعض صورتوں میں عارضی سفری پابندیاں بھی نافذ کر دی گئی ہیں. کینیڈا نے بھی متاثر ممالک سے آنے والوں کے لیے 21 دن کا قرنطینہ لازمی قرار دیا ہے, جبکہ سنگاپور اور جاپان میں بھی سخت نگرانی اور طبی چیکنگ جاری ہے. طبی ماہرین کے مطابق ایبولا کی نایاب مندی بگیو جو ہے قسم تیزی سے پھیل رہی ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے, ہم یہ دعا کرتے ہیں. 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM. اگر آپ کے ونڈوز اور ڈورز لیک ہو رہے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں تو جناب یہ وقت ہے آپ رابطہ کر لیجیے رائٹ ونڈو فورس, اور آپ کچھ ڈاؤن پیمنٹ دے دیجیے, باقی ایک سال بعد دے دیجیے. سم کنڈیشن میں اپلائیں. آپ کال کر لیجیے, اسپیشل ڈیل ہے ان کی. 4162063200 4162063200.

0: तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन सैरोटोनिन जो वैसे ही मौके जो है ना वो कम है, लोग बड़े जो है ना मतलब पैसे जोड़ के और अपना सारा साल जो है ना वो तैयारी करते हैं, ये दो तीन महीने होते हैं गर्मियों के जिसके अंदर लोग जाना चाहते हैं, और लोग कराची और बड़े शहर से भी जिनके कारोबार है जो सारा साल मेहनत करते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि यार चलो पैसे जोड़ के जाना। तो ऐसी चीजों को या इन चीजों को जो है ना हुकूमत को चाहिए कि मजीद जो है ना वो प्रमोट करें या इनको जो है ना वो सस्ता करे जो सैर व तफरी के जो है ना वो जराए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्योंकि आवाम के पास बहुत लिमिटेड है। तो मैं भी जो है ना अपनी फैमिली को लेकर निकला हुआ था, तो ठीक है महंगाई होने के बावजूद अब लोग क्या मतलब अपने बच्चों को लेके निकलना छोड़ देंगे या बच्चों को सैर व तफरी करवाना छोड़ देंगे, वो तो लोगों ने करना ही। हुकूमत को जो है ना वो थोड़ा सपोर्ट इस मामले में चाहिए कि जो कम से कम ये पेट्रोल है वो लग्जरी नहीं है, आप लग्जरी के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगाएं, आप लेवी जितनी इकट्ठी कर रहे हैं इससे पेट्रोल से वो आम आवाम के ऊपर जो है ना वो जुल्म है। तो वो उन चीजों के ऊपर आप टैक्स लगाएं जो लग्जरी है, पेट्रोल जो है ना वो लग्जरी नहीं है, जरूरत है। और आपने मिलना मिलाना ईद के ऊपर मिलना मिलाना गोश्त करना जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो घुमाना फिराना तफरी करवाना
1: ठीक है। इब्राहिमी माहिदे इब्राहिम अकॉर्ड पर अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहती हैं फलस्तीन के वाले से, पाकिस्तान अपने असूली मौकफ पर कायम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अमरीका में खड़े होकर अमरीका को ये जवाब दिए हैं, हर बार इसराइल के साथ ताल्लुकात के मामले में लोग फौरी तौर पर हुकूमत को शक की निगाह से क्यों देखने लग जाते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो।
0: हाँ जी देखें, ये हम चाहे फौजी हुकूमत हो या सिविलियन हुकूमत हो, खान साहब की हुकूमत हो या नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी का कोई मतलब एक बीच में जरा फैक्टर हो, हमें जो 2007 की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की उसके दौरान भी यही कैमोगोइयां यही खबरें और सारे मामला जो है ना इसी तरीके से सरगर्म रहते थे। बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये है कि हुकूमतों के ऊपर जो है ना वो हुकूमत की नीयत जो है ना मतलब ये कि क्या बोलते हैं उसको कि बाकी सारे मामला को जो है ना वो देखते हुए आवाम को जो है ना एक डर खौफ जो है ना वो रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हमारे अंदर से हमारे माशरे में से ही जो है ना वो निकल के सामने आई हुई है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो कुछ लॉबी कुछ जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि कुछ लोग और कुछ ग्रुप्स जो है ना वो ऐसे हैं जो मुसलसल इस मेहनत और कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो अगर हमारा इतना ही जो है ना वो दो टोक मौकफ इसके ऊपर जो है ना वो क्लियर है और हर दफा इसको जो है ना वो क्लियर किया जाता है तो फिर हुकूमत इन चीजों के ऊपर भी नोटिस लेना। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अभी आपको इंशाल्लाह आपने खबर देखी भी होगी कि चकवाल के अंदर जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर इसराइल का जो झंडा लगा हुआ था, तो वो मतलब ऐसे जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो फिर हुकूमत उसके ऊपर एक्शन क्या लेती है। अभी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितने वाकयात ऐसे हुए, अभी मैंने कल परसों भी एक वीडियो देखी है यहाँ पे एक शख्स जो है वो फलस्तीनियों के लिए नारा लगा रहा था तो पुलिस आगे उसको पकड़ के ले जाती है। तो ये मतलब है कि ये चीजें भी आपके साथ साथ जो है ना वो देखनी है, क्या हमारे मुल्क के अंदर इतनी आजादी है कि आप खुल के फलस्तीन को इसराइल के ऊपर जाना वो तनकीद कर सके और फलस्तीनियों के लिए।
1: लेकिन सर जिस किस्म के आजकल मामलात हैं आपको पता है ये प्लान्ड होती हैं चीज़ें, इस किस्म का जो बिल्कुल ऐसा एक किस्म का वाक़ होता है ना एक झंडा एक फलस्तीन, तो ये प्लान्ड अपने काम के लिए ये लोग मखसूस तरीके से इस चीज़ को करते हैं।
0: बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना ओवरऑल एक आम बंदा, मैं समझ जाऊंगा इस बात को आप समझ जाएंगे, एक आम बंदा जो वीडियो देखेगा वो इस बात को नहीं समझेगा। तो हुकूमत के ऊपर जो है ना वो क्लैरिटी, आप अपना मौका करें, आप उसको एक्सप्लेन करें, ये बंदा इसलिए जो है वो गलत कर रहा था, ये उसका एजेंडा था, इसलिए इसको पकड़ा गया, वरना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप फलस्तीन के हक में रैली भी निकालते हैं सब कुछ करते हैं।
1: पुलिस ने पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर साहब को साथियों समेत हिरासत में लिया और फिर सुबह बदर कर दिया। वज़ीर दाखला गिलगित बल्तिस्तान साजिद अल बेग ने मामले में बताया कि जुनैद अकबर के साथियों ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी, बगैर इजाज़त और इतला वो जो है वो जालकोट पहुँचे थे, रैली से खिताब भी किया था। तो अब क्या गिलगित में भी सियासी स्पेस पीटीआई के लिए नहीं है, मतलब इस तरह लोग कहते हैं जमहूरी इख्तियार की नफी है।
0: नहीं देखें गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत रही है पीटीआई की, और सारी बात है जब आप हुकूमत में होते हैं सेंट्रल हुकूमत में होते हैं तो बहुत सारी ये जो हमारा आजाद कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, पाटा का जो है ना वो एरिया हो गया, तो जो है ना वो जम हो गया है सूबे के अंदर ही, और इस तरह जो है ना मतलब देखिए और कुछ जगहों लोकल बॉडी के अंदर उसका इम्पैक्ट होता है वफाकी हुकूमत का, और ज्यादातर लोग उसी के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। तो उसी तरह के अंदर पीटीआई की हुकूमत रही है, उनका वजीर आला रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो उनकी एक बड़ी अच्छी फुटस्टेप्स और उनकी अच्छी जो है ना वो एक फॉलोइंग है पीटीआई की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि ज़ाब्ते अख़लाक मतलब ये कब से ज़ाब्ते अख़लाक बन गया कि अगर किसी पीटीआई के रहनुमा ने जाके रैली निकालनी है या रैली से खिताब करना है तो उसने पहले पेश की।
1: जुनैद अकबर साहब कोई

0: वो मतलब मेंबर पार्लियामेंट वगैरह तो नहीं है, मतलब बात को ये होता है ना कि जब मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं तो फिर उसके लिए मना होता है कि कंपेन नहीं कर सकते।
1: अगर आप वजीर गुजरा हो, मेंबर पार्लियामेंट का भी कोई इशू नहीं है,
0: नहीं इशू, ठीक
1: है,
0: सदर है, पीटीआई के वहाँ के, बिल्कुल
1: तो मतलब ऐसे ही शख्स का जो है ना वो वहाँ पे जाना, हाँ अगर वजीर आला खुद जाते हैं, अगर जो है ना कोई सूबाई गुजरात है वो जाते हैं, वो भी अपने सूबे के अंदर होता है,
0: ठीक है,
1: अपने सूबे के अंदर होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर खैबर पख्तूनख्वा का कोई वजीर गिलगित के अंदर जाके कोई अनाउंसमेंट कर भी देता है तो अनाउंसमेंट उसकी तरफ वो तो नहीं कुछ कर सकता, अपने हल्के के अंदर, अपने सूबे के अंदर गुजरात के ऊपर पाबंदी होती है क्योंकि उनका बाहर आने का स्रोत होता है, वो
0: जाता है, ठीक है। और चेक कॉज ले लेंगे स्टूडियोज में, रबे के नंबर 416-593-0003, 416-593-0003। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ 7997, सर आप ऑन एयर बात कीजिए। जी सर।
2: हेलो।
0: जी जी,
2: ये सामरिकम भट्टी साहब,
0: ये तो अच्छा, ये अपना शुजा भाई हैं। जी 5666। जी जी जी जनाब।
2: जी सामरिकम भट्टी साहब, कैसे हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक
2: साहब। देखिए हमारा प्यारा वतन है, अब ये आपके मीडिया है, एक वो था जिसने कहा कि मैं इस्लामाबाद गया और मुझे वहाँ या कराची गया, मुझे पटसन की खुशबू आई। बात यह है कि हमने एतबार कर लिया, ऐसा नहीं है। देखिए कल भी खबर आप लोगों ने बड़ी ऑथेंटिक दी, कभी 60 लाख कुर्बानियां हुई है, गर्भत हो गई है, ये है वो है। देखिए केंद्रीय कॉर्पोरेट
0: जो आज जो आई है उसमें बताया कि पिछले साल से ज्यादा कुर्बानियां हुई इस साल।
1: वो जो खबर थी कल वाली वो 2022 के मुकाबले में थी और
2: हमने आराम से
1: ज्यादा हुई है, लेकिन वो भी सिर्फ 10 लाख का फर्क।
0: ठीक,
2: हमने आराम से कह दिया पाकिस्तान गुर्बत और ये और वो।
0: कहाँ कहाँ गुर्बत हो गई यार, महंगाई हो गई, इसमें कौन सी गलत बात है? महंगाई क्यों नहीं बांटते इस बात को आप यार, कमाल है।
2: बटी साहब यहाँ करें ना,
0: नहीं है महंगाई हर जगह पे है, मतलब फर्क तो है ना। चले खैर उस बात को छोड़े, आज के टॉपिक से बात करें। जी जी,
2: दूसरी बात की आ जाती है, देखिए तो बात यह है कि हम आराम से कह सकते हैं जी पाकिस्तान जिसका भी बात की इसहाकदार साहब ने जो बात की है जाकर, प्रजम्पशन के ऊपर बातें नहीं करनी चाहिए अपने मुल्क से, अपनी क़यादत से।
0: नहीं नहीं, उन्होंने तो खुल के बात की कि हम नहीं, उन्होंने तो खड़े होकर बात की कि नहीं मानेंगे हम, वो तो कह उन्होंने तो कहा, वो यही तो कह रहे हैं।
2: हमें हमें अपनी क़यादत पे यकीन रखना चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान की क़यादत पे, चाहे अच्छी क़यादत हो चाहे वो इमरान खान की हुकूमत भी थी, मैं हमेशा उसका सपोर्टर था कि यार उसको टाइम दो, उसको टाइम दो। बात यह है कि उसने खुद अपनी हरकतों की वजह से, आप जुनेद अकबर साहब की बात आप कर रहे हैं, देखिए जुनेद अकबर साहब अगर जाकर वहां पे केपीके के जराए यूज करते हैं और केपीके के जराए को यूज करने के लिए कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर उनका बैन लगना चाहिए कि नहीं? बात तो सिंपल सी है, आपके आराम से शासक होती ही नहीं है पीटीआई
0: की। सर आप ये देखें, आप जो मर्जी मतलब करें, बहरहाल पीटीआई के लिए प्रॉब्लम है, उनको नहीं खुल के जो है वो करने दिया जा रहा, मतलब
2: हर प्रॉब्लम तो पीटीआई ने खुद की है ना।
0: नहीं, जो हुआ सो वो अब तो करने दे उनको, ना कश्मीर में करने दे रहे हैं, ना गिलगित में करने दे रहे हैं, इस तरह सियासत
2: नहीं। फिर आप अल्ताफ हुसैन साहब को क्यों आप
0: ऐसे मुआवजना नहीं होता होता, मतलब वो डिफरेंट चीज है। अल्ताफ
2: हुसैन साहब मेरे ख्याल में इतना बड़ा कसूर नहीं था, जितना बड़ा कसूर
0: सर अब आप एमकेएम के साथ हो गए हैं। खैर एनीवेज चले ठीक।
2: नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मैं बकूती
0: के मत आप ना ऐसे उल्ट इधर उधर की मिसालें ना दिया करें ना, जो बात है उस पर चले ठीक है।
2: एक उस शख्स को ऐसा, दूसरी बात से भट्टी साहब एक छोटी सी बात और मैं करूंगा, ये जो लोग भी सारे आते हैं इन्हें चाहिए पाकिस्तान का जाया करें साल के साल, यहाँ बैठ
0: के नहीं कर सकते ना, कैसे दौरा करें, मतलब इतने मसाइल हैं, कोई जा थोड़ी सकता है, ऐसे कैसे
2: बताइए तो सही, मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या
0: आप टिकट ले देंगे? अच्छा ठीक है, चलो सही चले ठीक है। शुजा साहब मैं दूसरी कॉल दे लूँ सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट 7997 सर आप ऑन एयर बात कीजिए। 7997 जी, पूना साहब आप ऑन एयर बात कीजिए। हेलो 7997 चलें आप, मेरे ख्याल शायद दोबारा तो को ट्राई करने, आपको हमने ऑनर लिया हुआ लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो अक्रम साहब से कांटेक्ट कर लें। 5794 चौधरी अक्रम साहब, जी जी हेलो हेलो नहीं चलिए 802 को ले लें, ये सिर्फ सुन रहे हैं 802। आप अकरम साहब आप ऑन एयर हैं सर, चौधरी अकरम साहब। अच्छा इन दोनों के क्या हमारे साथ कुछ मसला है, लेकिन जो फर्स्ट 802 लॉट 802 अकरम साहब चौधरी अकरम साहब आप उनको ऑन एयर ले लें जी। अकरम साहब ऑन एयर है, चौधरी साहब
3: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम जनाब अली
3: बट्टी साहब, देखें बात उस बंदे की करते हैं, हमदर्दी उसके साथ करते हैं जो ये अपने दौरे हुकूमत में करतूते ना करता रहा हो। हमें एहसास है इस चीज का कि लीडरान के साथ, लेकिन यार पहले बंदा अपने गिरेबान में जाके अपनी मंजी के नीचे वो डंडा फेरे। बट्टी साहब मुझे ये बताएं, बिलाल साहब और पूरे मुल्क में बल्दियाती महकमे चलते रहे, खान साहब को क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि उन्होंने आके पंजाब के बल्दियाती इंतहाबात को कलदम करार
0: दे, तो कलदम करार दे दिया। नूनी तो करवाई नहीं रही इतने अरसे,
3: हम जब दिल करेंगे करवाएंगे,
0: दिल गया हार जाएंगे, हार जाएंगे।
3: बट्टी साहब पहले मेरी सुन ले,
0: वो हारते हार के डर से
3: निकल, बड़ी तकलीफ है बट्टी साहब, बड़ी तकलीफ है लोगों को।
0: नहीं तकलीफ नहीं है, डर के नहीं करवा रहे, करवाएं ना फिर, क्यों नहीं करवाएं
3: बट्टी साहब, करवा लेंगे ना,
0: क्यों करवाएंगे, इतने साल से नहीं करवाया, हारने
3: को बट्टी साहब करवा लेंगे। मुझे ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने
0: अदालतों के पीछे ना जाए, मतलब एक जो
3: है बट्टी साहब, मुझे पता बड़ी तकलीफ है पीटीआई वालों को और पीपल्स पार्टी को या दूसरे को, बात सुन ले
0: जी।
3: सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, तो इसी मकसद में कैदी 804 ने मकसद जूते की नोक पे रखा था और कहा था
0: सर
3: नाम
0: सही तरह लिया कि सर, फिर मेरे लिए मुश्किल होती है जो है इमरान
3: खान,
0: क्या फर्क पड़ता
3: है, गड़ी चोर नहीं है वो, गड़ी चोर
0: हम वापस में बहस कर रहे हैं, चले
3: गड़ी चोर वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने सर करार दिया है,
0: इल्जाम
3: ठीक है हम आपके, लेकिन मैं सर वो ही इज ए कन्विक्टेड सर्टिफाइड बंदा घड़ी चोर है
0: सर, मौजू पे बात करें ना, ये तो आप जितनी मर्जी कहते रहेंगे मौजू पे बात करेंगे तो आप कहते ही रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है,
3: ये भी मौजू है, वो अंदर किस बात पे है, 190 मिलियन का वो चोर है
0: चोई साहब, बाकी दो कॉल्सें और भी लेनी है प्लीज इस पे
3: चले, मैं बात करता हूँ। देखिए बट्टी साहब बात ये है, कुर्बानी लोगों के पास पैसे बड़े हैं, लोगों ने कुर्बानियां भी ज्यादा दी हैं, मामला ज्यादा कैश पे चलते हैं। बात बड़ी सिंपल है, हम जो जिधर से गंदी बात मिलती है, ये हमारे मुल्क दुश्मन अनासर उसमें पीटीआई भी शामिल है, उसको उठा लेती है, तो ये गलत बात हम करते हैं भाई। सियासत करो, सियासत करना बट्टी साहब कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मुझे आप ये तो बताएं ना, क्या नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, उनके एक बंदे नहीं या 10 बंदों ने जो भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, क्या उनके एमएन ने उनको नहीं मकसद सारी जिंदगी के लिए उनको बैन कर दिया गया था, उनको सजाई दी गई थी भाई जुनेद अकरम? पहली बात तो ये बातें करते हैं इनकलाब की, और पहले अपने आप में गैरत लेके आओ और बाहर निकलो, फिर दुनिया जहान के आप सारे मामला करके देख बैठे हैं, अब हम मुजाकरात करते हैं, तुम तो इसमें गवर्नमेंट को मानते ही नहीं हो, किसके साथ मुजाकरात करने हैं?
0: चो चो साहब मैं अगली कॉल ले लूं, थैंक यू बहुत
3: शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ये ऐसे ही है, इनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया हुआ, ये तरले मिनटों पे आएंगे, मेरी बात आज लिख लें किसी बात पे।
0: चले ठीक, ओके सर। नूरुद्दीन साहब आप ऑन एयर सर, 7997 जी आप बात कीजिए।
4: कैसे हैं आप
0: जी? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए खैरियत? ठीक है
4: जनाब, बात ये है कि हम जो भी यहाँ बातें करते हैं ना, नो बडी केयर्स अबाउट दैट, लेकिन जनरली दिन ब दिन पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, बस चाहे नवाज शरीफ हुए थे या ये शहबाज शरीफ है या फौज ने 3-4 दफा सब कुछ करके देख लिया, पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, वो रियलिटी है। पहली तो बात ये है कि अगर पाकिस्तान कमजोर नहीं हो रहा होता तो ये इंडिया की हिम्मत थी कि वो कश्मीर को अपने अंदर एक्सटेंड कर लेता? ठीक है, इतने पैसे, इतना बजट, इतने बहादुर फौजी जो कहते हैं अपने आप को बहादुर,
0: नहीं है, कहते नहीं है, साबित किया पिछले साल, नहीं ना अपना ऐसे नाम कभी को सही तरह बात क्या जब साबित किया पिछले साल, ऐसे खाम खाम नहीं ना बात।
5: ओके ओके बहुत बहादुर है। दूसरे पॉलिटिकल लीडर जो भी आता है, ये पता नहीं इमरान खान से लोगों को क्या इख्तलाफ है भाई, 1.5 करोड़ लोगों के या पता नहीं 2 करोड़ लोगों की वोटों से वो आया है, उसपे करप्शन के वो उसके नहीं पॉपुलर छोड़ दे, उसकी कम से कम अगर कोई आदमी 50 वोट से भी जीत के आया है ना,
0: ठीक
5: है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है।
0: ठीक है सर, राइट सर,
5: ठीक है,
0: ठीक
5: है। बाकी जो ये लोग है ना जितने भी
0: चले,
5: शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या जो भी लीडर गए, हाफिज जरदारी, ये वो फलान ढिगा,
0: सही,
5: इन सबों ने किया क्या, ये फौज के साथ हाथ मिलाते हैं, हिस्से बांट लेते हैं
0: सारे फौज के थ्रू आए। थैंक यू सर। लास्ट कॉल लेंगे जनाब 5415। जी सर, चॉइस ऑफ 5। वालेकुम सलाम।
6: जी सलाम अलैकुम।
0: जी वाह सर, जी वाह
6: सर, की हाल है? ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक सर, जी बिल्कुल ठीक सर।
6: अच्छा पट्टी साहब, पहली गल ते वेखो, मेरा ख्याल है कि पंजाब दे विच दी तारीख दे विच, बल्कि पूरे पाकिस्तान दी तारीख दे विच, ए कुर्बानी दी लाशां जिन्नी सफाई, जिन्ना अच्छा निजाम पूरे पंजाब दे विच, सिर्फ वड्डे शहरां दी मैं गल नहीं कर रहा, पूरे पंजाब दे विच जिस तरह होया, मेरा ख्याल अपनी मिसाल आप चेक कर लो, जेड़े जिथों देले काउंटर चेक कर लो कि किधरे भी अलैशां जिहड़ियां उन्होंने जमा नहीं होन दित्तियां, जेड़ा कि कई कई दिन पए रहिंदे सन ते बीमारियां ते बीमारियां पैदा हुंदियां
0: जी जी।
6: ऐ वे पाकिस्तान बदलिया होया पाकिस्तान पट्टी साहब।
0: ठीक है सर।
6: दूसरी गल पट्टी साहब, के एक पहली बार नहीं होया, बहुत छोटी जी गल है, बड़े बड़े वड़े लीडरां नूं जिहड़ा ओ जिसे इलैक्शन हो रहा हुंदा तो उन्हां नूं उत्थे नहीं जान दिता जांदा जां उन्हां नूं वापस भेज दिता जांदा, ये आम पाकिस्तान दे विच रूटीन मैटर है पट्टी साहब, ना इहना कोई जमहूरीयत कमजोर होई है, ना इहना कोई जिहड़ा किसे दे कोई हक तलफी
0: होई। साहब थैंक यू सर जी, इन्नी गल कर सकते हैं क्योंकि अजान का टाइम हो गया, मैं तुहाडे नाल मदर चाहवांगा, इंशाल्लाह मंडे फिर गल करांगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिलास साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, और 2 दिन की छुट्टी है, और आप भी रेस्ट करें, अब मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सामिन कराम आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वक्त जो है अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, आपको ले चलेंगे अजान मगरिब इंशाल्लाह ताला सुनेंगे, फिर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज़ में, रबते के नंबर 4165930003। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है, दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में अजान मगरिब।